अब तुझे कुछ बताना था, तेरी खामोशी तो एक बहाना था, समझने का प्रयास मेरा पूरा था। जब भी मैं कुछ महसूस कर पाता, हर वक्त तेरे पास अनकही बातें छिपाने का बहाना था। न जाने कौन सा अपना सा एहसास ये तेरे आ जाने से मुझको हुआ, बस तेरे नाम से मेरे होठों को मुस्कुराना था। पर जिंदगी बीत रही थी ऐसी अनकही कश्मकश में कि मेरी राहों को तेरी दूर से जाना था। क्या करता मैं और तू ही पता, अनजाने रास्तों पर हमारा कहाँ ठिकाना था। सारे हादसों को ठहर जाने के बाद न जाने क्यों है आज मन में भी, शायद तुझे कुछ बताना था पर तेरी खामोशी तो एक बहाना था।

शायद तुझे कुछ बताना था, तेरी खामोशी तो एक बहाना था, समझने का प्रयास मेरा पूरा था। जब भी मैं कुछ महसूस कर पाता, हर वक्त तेरे पास अनकही बातें छिपाने का बहाना था। न जाने कौन सा अपना सा एहसास ये तेरे आ जाने से मुझको हुआ, बस तेरे नाम से मेरे होठों को मुस्कुराना था। पर जिंदगी बीत रही थी ऐसी अनकही कश्मकश में कि मेरी राहों को तेरी दूर से जाना था। क्या करता मैं और तू ही पता, अनजाने रास्तों पर हमारा कहाँ ठिकाना था। सारे हादसों को ठहर जाने के बाद न जाने क्यों है आज मन में भी शायद तुझे कुछ बताना था।